नगर गैया को घुमाया। जो बाबे हम प्रमया तो सब सुनाया, सदगुरु जगत दाता को सब सुनाया, सदगुरु ने पानी क्यों बोया।

पहला सुचा पोष के बैठा सुची अगे रखियो तो ना खिजो जाओ सुचा हो के जे गया लगा पंच लोग भक्ति जाए सुटिया किस ए लगा दो।

जाति और संपूर्ण वादी धैवत संवादी गंधार है। एरदे नाल दा मिलदा राग जिहड़ा है जौनपुरी है और जौनपुरी दे आरोह दे अंदर निषाद लगदा है, इस विच नहीं लाईदा। इसका रूप इस तरह चलता है।

अपनी सेवा प्रवान करी संता देव जो सदगुरु सभी अजन के बैठ के आप जी हरि जस द्वारा हरि कीर्तन द्वारा बरसाए जा रहे हैं। हरि नाम रूप मोती चुपके मनुख जीवन सफल बना रहे सदगुरु महाराज बख्श कर सारा की हाजिर प्रजा तेला सारा के सिर के उत्ते बख्शिश बराहत रखन अंग संसाए देश प्रदेश रखा कर आओ जितनी संगत बैठी है गुरु पास चलना कमला भी जोड़ो छोलिया गई अरदास बेनती करो सतगुरु जीओ कृपा करके अपने पवित्र नाम की खैर साड़ी छोलिया पाओ आओ सारे जपो कोई सना कर ना जाए।

रखे लगे उन्हों इस राज के बीच में दिखाया जाए तेरे स्वयं तेरी रचना के जगह सारे गुरु तुझे भी सारे जगह है सत्ता की पूरी करने वाला आज बीच में राज पहुंच गया स्नान पीते अस्त्र लगाए रूह केवड़े लगाए कितनी पोशाक पहनाई सिर्फ काल लिखने लगे कहे लगे खैर मैं तो अड्डा बात क्या समझू हुकूमतों के बंदा में कह लगा मेरे नाल पति की आप सुन गया पीछे पीछे सारे है चार किसे पहुंच गए किसे मेरे चंद्रनाथ के पास का जो कर गया या मेरे मत्थर से किया अरुण ने तो किया तो क्या था फिर किया नाल की सिस्टी ने किया आओ बैठी मरदाने ने तो किया क्या भाई तू कर वाला है इन्हें किया था कल का निगाह में दो पाई फिर दर्द है आज कितनी वर्दी है तेजिया खुशबुआ एक केड़ी कृपा करो क्या कहने लगा बता दिया ये सारी कृपा मेरे भाई गुरु गुरु नानक की भक्त अगर कहने लगे मैं बता दिया सच नहीं बाबा ये केड़ी चीज तेरी से हो एडी वड्डी दात ਸਤੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਦਾਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

सनन निवास जैसे मीन की ना घटे रुच। दीपक परदास कटे प्रीत ना पतंग की उस सुमास जैसे त्रिपत ना मध्य को उड़ते आकाश आस कटे ना बिहंग की कटाकन को।

बहुत प्राचीन मधुर अते परम खुराग विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर धैवत अते संवादी ऋषभ है, इसकी आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ फुटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। भैरो का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्या। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द दा गायन कर रहे हन भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा नाही को देव,

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कार्य स्नान सिमर करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया,

0: नाम है, ए नाम दुनिया में पार, एक ओंकार वाहिगुरु एक है, सत नाम ओदा नाम सत, करता पुरख सारी सृष्टि दा करता, निर्भव ओनू किसे दा भय नहीं, निर्वैर ओनू किसे नाल वैर नहीं, अकाल मूर्त काल तू रहत, अजूनी जूनिया तू भी रहत, स्वयंभंगो दा सुते प्रकाश है। पर ए मिलेगा किस तरह, गुर प्रसाद गुरु दी कृपा। तो बाबा जी वचन करदे सन, ए नाम प्राप्त करके हजूर दी समाधि लग, आवाज आई नानक जी की कर रहे हो, तो हजूर ने प्यार नाल कहा, जप
1: जप
0: वाहिगुरु मैं जप रहा की।

जो कोई सोया है ओदी कमाई करनी, बहुती करांगे बहुती नहीं तो थोड़ी बहुती कमाई करिए, अमृत वेले जाके इशनान करिए। कले आए हैं किधर, कले ही तुर जाने, एकांत च बह के जितना समय मिल सके मूल मंत्र दा जाप करे। पहली पौड़ी महामंत्र बाबा जी वचन कर दे सन, जितने भी धर्म हैं जितने भी मंत्र हैं ये सब तू महामंत्र है। पहली पौड़ी एदा जाप करिया करो, वाहिगुरु शब्द दा जाप एकांत च बह कार्य बह के, ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कार्य प्रकाश है तो गुरु साहब का प्रकाश करके सनमुख बह के नितनेम करे। ये सुखमनी साहब पढ़नी है सनमुख, बाबा जी बचन कर दे सन अमृत वेले जिसलिए प्रकाश हो जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, फिर जो कुछ करना है गुरु की हजूरी च कर, जो कुछ करी सो तेरे हजूर। सतगुरु तो उस वेले अपने आनंद च बैठे होंगे। ये सुखमनी साहब का पाठ करना, ये नहीं भी गुरु साहब तो पाठ शुरू। कई प्रेमी तो पाठ करी जाते हैं मुंह ते पल्ला नहीं लेंदे, सारिया थुक्का गुरु तस पैंदी, एडा पाप कर दे एडी भूल कर। एक तो मुंह ते पल्ला लेके पाठ करिया करो, दूजा अमृत वेले जो नितने ये अखंड पाठ है तो ठीक है, सहज पाठ हो रहा है ठीक है, पर जे नितनेम करना है बाबा जी बचन कर दे सन तो गुरु नु सुनाना है, गुरु की हजूरी च बैठ के फिर जो नितनेम करांगे शरदा है होवे भी मेरा गुरु सुन रहा है, वो हाजरी प्रवान होवेगी। तो मेरे कहण दा मकसद आज सेवका ने चला जाना है, कई बच्चियां भाई साहब फिर कदा हो गए, ये मेरे गुरु दे हाथ है मेरे वास्ते गल नहीं। तो जो कुछ असी लाभ लिया है ये कोशिश ही करिए कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले सुखा दी दात मिले। तो नाल ही जो कुछ गुरु नानक दा दास, ना मैं संत ना कोई महापुरुष, मैं तो गुरु का कीर्तनी हाँ, शब्द दी दात गुरु ने बख्शी है, शब्द दा आसरा लेके तकरीबन 50 साल तो गुरु की संगतां दे दर्शन कर रहा हाँ। फिर संगतां ने अत्यंत प्यार कीता है, किसे चीज दी कमी नहीं है, गुरु ने कोठियां कारा सब कुछ बख्शिया, पर ए बख्शिश किस दी है, गुरु के शब्द दी है। तो गुरु का कीर्तनिया जान के जो कुछ आप जी ने प्यार कीता है तो दे बदले मेरे को कुछ नहीं जो मैं तुहानू दे, अरदास करदा हाँ वाहिगुरु तुहाडी कामना सफल करे, तुसी भी मेरे वास्ते अरदास करिया जे, देहो सजन आसीसड़िया जो होए साहिब सो मेल भुल चुक दिखेना। आओ हुण सुल्तानपुर बाबे दे दर्शन करके सारियां संतां की पढ़ रही हैं।

फकीर लक्षण पासा जी की वारदा लगा के कीर्तन की समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी अज की चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हां तुहाडी जो तुसी प्यार दिता है और ए भी गुरु की प्रेरणा सी तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो ये बेनती की कई प्रेमी कहन लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिन्हां जिन्हां ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी सात संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दी वार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी की वार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्वासा पूर्णी आसा जी की वार तो ये छंद आप आसा राग